0: केन उला खरदांगा केन उला पर मा पबिया खरी न
1: मी छोन साजा चेस छे या शु दी सोंबो या छे दी नी नामया सेम नानी माचे छे या छे नंदा तो रानी सुके छु दादा रे युवा नेरांग छे या छु भूमिंग न खरसु यु ना
0: ली शाओ जुन सा
1: क्या दांबे शाओ दा मोगुंग जुन दिर बे
0: ताग री
1: केम दो नेसु के छु